हम आकाशवरुं अल्लाह ही फकीर के तिमम मेन्नी मुस्संदिन्ने बुने मी हुंगे बुनु अल्लाह अस्सवा वड़िगें फिखं काशवरे एवरें बुने बुनुमाय एवरें हक्का का अनुला नबीयुं कतुलु कुलकं निखं हुरे तिमन रसकलांगे लिववा हुशीमे अदि कियामे द्वहुं एवरें तिमन रसकलांगे वाही कुरववा हुशीमे तियबा मी हुं अंदा अंदा हुरी नरकाग अजाबग रहा लिबगन्नाशे।

हमकशवरुं उडुथकाय बिंहेद्दुम गय्याय रेदुआ तफात उमगा उद्दीग अहुल वेरिन्ना कशवरु वेगेंहुरी हेकितके वे।

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारे कोलम होरे लफाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ जंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: कोद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐह मी है गेदा तोरो अमाम वे उफावेरी वे दाने
2: कुलीबरे लोकप्रभा फरार तक खास को दिव्य राज्य गड़ूं गिनस तिने
3: कुली कुली पर हफ्ता आगे एम में फाहग कुलीबे कुलीबर खबर तक राज्य के एक ही गांव को तोगे दंड तक उन्फेनिनो ही नुकराफदा हैरान कुलवानी नतीजा तक बेर दुनिया के कुलीबर खबर तक ताजा कमाए
2: जुआंग एथलीटों के उम्मीदी दथुरा कामयाबी के ड्रम
3: कुरियर रेफावा फोर गद मुबारक तक एम्मे अवह फिन्नाने मिष्टौगे एम्मे पहुगे तैयार
2: आदित्य दोहगे हेंदुनु अक्कड तिबिहुं
3: रिपीट होम दोहगे मेंदुरु एकिच्चा
2: एंहा सतरस्तेक साड़िस नु एक किलोहर्ट्स मीडियम वेव
3: अड्डे नोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
2: दिवहिराज जे के आड़िया
4: हेमा बिही के अलामेता
5: हुंगाऊं
4: रोगा जे हों
5: केसुं
4: लोरेवुं
5: हमुगा अरब बिही तकिन नगुं
4: आमो का बिही ता फुरतम नगानी मूना कारुगा ये फो मेमती बुरकशी आतुगा अधे ये फो फैगा
5: हेमा बिही के अलामते फेनी जनमा लसनुकुरवा सही फरवा होदवा
6: ओबा मिहिरी एसटीएमओल गे
7: एसटीएमओल ने ओबा गोंता
8: नाबी कोटो एसटीएमओल
7: गे ए हेलो
6: मिहिरी एसटीएमओल गे
7: हिन त वेगेम मुळेनी
6: एसटीएमओल ने गेंहा चुरिया व्यापारी पुरीम कारन होदुमुगे फुरसत लिबेने
9: ए अस्त युति नसीब लगवाला एसटीएम बी प्रमोशन निमेंदे इन गिना व्यापारी को कारन होदुमुगे फुरसत बिहार कुरियदा मी प्रमोशन निमेवी दी है डिसेंबर गनिया
8: ए कोबा गोंता कोति ओळेने
7: एसटीएमओल गा
8: हिन त वेगेम मुळेनी
7: ए नेंगे ता
10: मी जहुनिया कंतक दिल आहे कनु मितनु एम इंच विस्कुरिया के जस्सा देवे मी वरु नुकुरिया मी पिकअप विस्कुरिया कनु जेन
11: एक्सक्यूज तांकोले तक फाणंता
10: दत्ता मबेस मी वणा तांकोले नुदि बिगेन
11: आहरेंगे के दुरमती गे तीनी तियापुर तांकोले कुरिया व्यस फहते व्यस जस्सा दिम आह नगे वदे वेनी
10: एहंता सॉरी
11: दरफला समा तिता इंदेगे कोच इत कियवेनी बेरुंगे मैवे अडुफक गंडु लाहिकेनु कियावाका
12: मम्मा वके मच्चन एरियस कियवेता जेहिकेन हुरिगेन लवजहा शोकुले अडुनु एहेन अडेन नीवे अति एगे मतीबा हदा अडुफक गंडा हेति बोलु करिस साहिब
11: देन की कुरानी दरफला एहेले कुडामीहा इरुकोले नुआन निंदावा फमिनकु मेले सिहारय आदि में उन्होंने ये नहेलम वायरा नमाद वसारा
13: हम ही में माहौल कायम करूँगा को मैं मीह को इस एमीह के फर्दी जिम्मा अदा करूँगा
14: दुनिया के हतरों पितुं
3: राज्य के उतुरा देखोनुं
14: खबरा माउलुमात
3: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
14: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
3: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

एक ही रहा। अस्सलाम वालेकुम दिरुळमकी हिंगम जहुमा उफा हिन्नु तनवस्कमा हिद्दतिक दिरुळमगे मी रहा तका कुनमतिला कामयाब होदुमा कोम मिहकुस मस्सके कुरमाने एक ही रहा गे मिहफ्तागे ब्याग मिगेनस्तनी बाइक दिरुळमगा कुनमतिला जहुनु मिफदा तफातुर है अडोसवालपा

हम कशवरुं उडु थकाय बिं हिद्दुम गय्याय रेदवा तफात उमगा बुद्धिग अहुल वेरिन्ना कशवरु वेगेंहुरी हेकितके वे।

एक ही रहा एकी रहागा मिहफ्तागा मिगनस्तिं ड्रामा के अस्तकी मशहूर वाहक लिवंतरिया अल्फालिल मडुल मोहम्मद वहीद लिवाफावा सकीना के हिद्दतिकं ड्रामा उफद्दाय कुलवाली अलगोंड अली राजी ड्रामा कुलमगा बैवरवी सकीना हलीमत मुसा इब्राहिम सायद अहमद मरियम फुलु फातमत वहीदा फातमदाता फातमत मजिया आदम हुसैन नाजिम अदे शरीफ अहमद सिमान